0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब चिप से लेकर जहाज तक विनिर्माण के क्षेत्र में नया भविष्य तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़े समुद्री जहाजों तक पूरी तरह आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 महत्वपूर्ण खंड भी राष्ट्र को समर्पित किए।
1: 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत के जैसा ही है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर

0: और 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बँड 102 MHz आणि 229 nm अर्थात 1305 kHz आकाशवाणीचं हे परभणी केंद्र आहे। सकाळचे 6:05 झाली आहेत। प्रसारित करीत आहोत नमस्कार परभणी या अंतर्गत सुरुवातीला विचारशलाका या कार्यक्रमामध्ये शेजार धर्म याविषयी अंजली कुलकर्णी यांचे विचार।

हम सबने ये ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। हम सबका है एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। स्वच्छ भारत का है जन अभियान, घर घर तक ये पहुंचे पैगाम। गली गली सड़क सड़क पूरा शहर स्वच्छ हो, एक अकेला क्या करे इसमें सबका साथ हो। स्वच्छ बने ये भारत सारा, घर घर में फैले उजियारा। सफाई का ये पावन अभियान, मिलकर बनाएं भारत महान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेनदेन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
1: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
0: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरेन रेटिंग्स भी है।
0: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका

0: अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है, उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रॉक्सिमेटली 7.8% है।
0: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उपरक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमेरिकी पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमेरिकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
6: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें

0: लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमेरिकी आयात शामिल है। अमेरिका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था।

0: फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमरीकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75,000 से 80,000 वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इसे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इसे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
3: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपए प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपए प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगर राज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई, ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आर्थिक और वित्तीय मामलों पर भी जोर, कृषि, बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला

0: बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर चार दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में आरना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says UPI is undisputed champion of India's fintech success story. Defence Minister Rajnath Singh describes Indian community in Sri Lanka as important bridge between the two countries. US says it destroyed 5 Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 US goods. Rain likely to lash large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21 before southwest monsoon begins its seasonal retreat. And in tennis, Aryna Sabalenka and Francis Tiafoe enter semifinals of US Open in New York. And now the news in detail. Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's Unified Payments Interface, or UPI, is the undisputed champion of this success story. Inaugurating the Global FinTech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said, "This is such a massive transformation that whenever FinTech is discussed, it will remain incomplete without UPI."
3: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
2: Reiterating his core philosophy of technological empowerment, the Prime Minister praised UPI as the ultimate tool for financial inclusion, successfully penetrating areas ignored by traditional banking models. The Prime Minister pointed out that over 24 billion UPI transactions occurred in August alone. Highlighting the global expansion of India's flagship digital payment system, the Prime Minister said that UPI is now live in 11 countries, turning what was once unimaginable into an everyday reality for international payments.
3: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
2: Defence Minister Rajnath Singh has described the Indian community in Sri Lanka as a bridge between the two countries, saying they play a crucial role in strengthening friendship between the two nations. Mr. Singh, who reached Colombo yesterday on a three-day visit to Sri Lanka, made the remarks while interacting with members of the Indian diaspora. The Defence Minister said that India will always stand firmly with Sri Lanka in times of crisis, underlining that the relationship between the two countries is based on shared history, culture and faith. In his address, Mr. Singh highlighted India's rapid economic transformation, saying the country is among the fastest growing major economies in the world and contributes more than 16% to global growth.
4: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है.
5: टुडे इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 16% टू ग्लोबल ग्रोथ. ओवर द पास्ट 10 टू 12 इयर्स द साइज ऑफ आवर इकोनॉमी हैज डबल्ड एंड एट अ टाइम व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग चैलेंजेस रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ इंडियाज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अप्रोक्सीमेटली 7.8%.
4: 7.8%

0: reflects your deep commitment to the use of technology and innovation in general and in particular in finance. Over the past decade, FinTech has fundamentally reshaped the architecture of Indian finance. It has taken banking from the branch to the hand of every citizen. Today, a shopkeeper in a small town, a farmer in a remote village, a young professional in a metro city, all of them transact, save and borrow through the same seamless digital rails. UPI, Aadhaar-enabled payment systems, and the Jan Dhan ecosystem. This is financial inclusion not only as a policy aspiration, but as lived everyday reality for hundreds of millions of Indians. This has been made possible by FinTech, which bridges and connects our vast, diverse population to the formal finance faster and affordably.
1: यानंतर माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थितांना संबोधित केलं.
2: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लगातार ये मेरा थर्ड ईयर है. साथियों, फिनटेक की इस एनर्जी के बीच ही मुंबई में सांस्कृतिक ऊर्जा भी इन दिनों चरम पर है. कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेशोत्सव शुरू होने जा रहा है. हमारे यहाँ हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है. मैं गणपति बापा को नमन करते हुए आप सभी को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. साथियों, दुनिया के हालात क्या है ये आप सब भली भांति जानते हैं. दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है. एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है. ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है. इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है. और ये जो विश्वास है वो मैं यहाँ आप सभी के चेहरों पर भी साफ साफ देख रहा हूं. साथियों, भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है. हाल में ही जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरिन रेटिंग्स को ए कैटेगरी में अपग्रेड किया है. अपग्रेड करना तो खुशी की बात है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि सौभाग्य 3 दशक के बाद आया है. 30 साल के बाद
1: जेव्हा जेव्हा फिनटेकची चर्चा होईल तेव्हा यूपीआयचा उल्लेख नक्कीच होईल असा विश्वास माननीय पंतप्रधानांनी या प्रसंगी व्यक्त केला.
2: हमारी मॅक्रो इकॉनॉमिक स्टेबिलिटी और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बीते वर्षों में किए हैं उन सबको लेकर दुनिया कितनी आश्वस्त है. और मैं फिर कहूंगा कि भारत की ये रिफॉर्म एक्सप्रेस और तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी. साथियों, भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई. मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी. साथियों।

0: अभी कुछ ही दिन पहले 25 अगस्त को यूपीआई ने अपने 10 साल पूरे किए हैं। 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था। अनेक पीढ़ियों ने बैंक का दरवाजा तक नहीं देखा था, लेकिन आज 10 वर्ष बाद देखिए, वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। साथियों, आज अकेले अगस्त महीने में ही यूपीआई से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। यानी हम यहां जितनी देर से बैठे हैं, सिर्फ 10 मिनट में ही औसतन 50 लाख से ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन देश भर में हो चुके होंगे। यही इंपैक्ट है जिसके कारण फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि यूपीआई केवल टैक्स स्टोरी नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल स्टोरी है। और साथियों, यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहां कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
1: वित्तीय क्षेत्रातील प्रगतीची प्रशंसा करतानाच माननीय पंतप्रधानांनी आपण तेवढ्यावरच समाधान मानणार नसून त्या पुढील उच्च ध्येयाप्रत वाटचाल सुरू करणार असल्याचं स्पष्ट केलं।
0: साथियों, आज हमारा यूपीआई कई देशों में पहुंचा है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है। अब उन देशों के पेमेंट सिस्टम के साथ जुड़ना हमारा अगला लक्ष्य होना चाहिए। सिंगापुर के साथ हम ये कर चुके हैं, इससे भारत और सिंगापुर के बीच ट्रांजेक्शन वैसे ही हो पा रहे हैं जैसे एक ही शहर के दो मोहल्लों के बीच होता है। यही कनेक्शन हमें अन्य देशों, अन्य बाजारों में भी बिल्ड करना है। इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना होगा। जहां भी भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं, जहां भी भारत बड़े पैमाने पर ट्रेड करता है, दुनिया का जो भी देश हमारे साथ चलने को तैयार है, हमें उन सबको जोड़ने के लिए काम करना होगा। साथियों, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विदेशों में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं और दुनिया में सबसे अधिक भारतीय ही विदेश से पैसा भेजते हैं, लेकिन आज उस पैसे का एक हिस्सा ट्रांजेक्शन कॉस्ट में चला जाता है। यूपीआई भारतीयों को इसमें भी बचत दिला सकता है और पैसा तेजी से भारतीय परिवारों के पास पहुंच सकता है। साथियों, आज आप भारत में कार्ड से पेमेंट कैसे करते हैं? यह सिस्टम उन स्टैंडर्ड्स पर चलता है जो कहीं और डिजाइन किए गए थे। हमने उन स्टैंडर्ड्स और रूल्स को अपनाया जो दूसरों ने बनाया था। उस समय हमारे पास अपना कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब हमारे पास अपना विकल्प है।
1: आगामी काळातील आव्हानं आणि लक्ष्यांबद्दल सांगताना माननीय पंतप्रधान म्हणाले,
0: साथियों, मैं समझता हूं फिनटेक देश की उस ताकत को उभार सकता है जो अभी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मॉडल्स की रीच से बाहर है या उस प्रकार से एड्रेस नहीं हो पा रही है। विकसित भारत के लिए इस ताकत का उभार बहुत जरूरी है। साथियों, इसका इंपैक्ट क्या होता है, ये हम सभी पीएम स्वनिधि की सफलता से देख ही रहे हैं। हमारे स्ट्रीट वेंडर्स शहर

बैंकों की रीढ़ है, लेकिन ये देश के बैंकिंग सिस्टम से, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से बाहर थे। पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है। इसलिए सरकार ने इस स्कीम को 2030 तक बढ़ाने का फैसला भी लिया है। साथियों, पीएम स्वनिधि को यह सफलता हासिल ही नहीं होती अगर यूपीआई ही न होता। इस स्कीम की सफलता में यूपीआई की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसी अनुभव से सीखते हुए हमें फिनटेक की ताकत से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और बढ़ाना है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।

0: ये आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। सैयद मेराज अली से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। यूपीआई भारत के फिनटेक सफर का हकीकी हीरो है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार ख्याल। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह। हुनरमंद खिलाड़ियों के लिए सरकारी मुलाजिमतों में 5% रिजर्वेशन को हमवार करने के लिए नजरसानी शुदा पॉलिसी को रियासती काबीना ने दी मंजूरी। कुनबी सर्टिफिकेट से मुतालिक मसाइल की यकसुई के लिए आज छत्रपति संभाजी नगर में आला सतही कमेटी का इजलास। और लातूर धाराशिव अजला में ज़रई फसलें और बागात बहरान का शिकार, अवामी नुमाइंदों की जानिब से खसूसी राहत पैकेज का ऐलान करने का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीआई भारत के फिनटेक सफ़र का हकीकी हीरो है। वो गुज़िश्ता रोज़ मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि फिनटेक वहाँ पहुँच सकता है जहाँ रिवायती मॉडल नहीं पहुँच सकते, और ये इसकी खासियत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि फिनटेक कंपनियाँ आला तरीन साइबर सिक्योरिटी, अपने अखलाकी डेटा के तहफ़ के मेयारात, एक काबिल फिनटेक रेगुलेटरी इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम और सारिफिन के तहफ़ के लिए फिनटेक इंडेक्स बनाएंगी। वज़ीर आज़म ने बताया कि फिनटेक की तोसी ने तरक्की याफ्ता भारत के मुस्तकबिल में एतमाद को मज़ीद मजबूत किया है। उन्होंने कहा,
1: हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे पहले से ज्यादा एनर्जी अनुभव होती है, पॉसिबिलिटीज का दायरा एक्सपेंड होता दिखता है। ये साफ साफ लगता है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ड्रीम्स और बोल्ड हो रहे हैं, और इसलिए विकसित भारत के फ्यूचर को लेकर मेरा विश्वास और मजबूत हो रहा है।
0: खबलाजी, वज़ीर आज़म ने गुजरात में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और कुल 326 किलोमीटर तवील और 20,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत वाली मगरबी मालबरदार रेलवे लाइन के 3 अहम मराहिल को कौम के नाम वक्फ़ किया। ये 1500 किलोमीटर तवील कॉरिडोर शुमाली भारत को मगरबी भारत से जोड़ेगा और JNPT बंदरगाह से मालबरदारी मुल्क के दीगर हिस्सों तक भी पहुँच सकेंगी। दरियासना उरन में JNPA में मनखदा तकरीब रूनवाई में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला सुनेत्रा पवार समेत दीगर वज़रा और आला सरकारी अफसरान मौजूद थे। रियासत में हुनरमंद खिलाड़ियों को सरकारी, नीम सरकारी और दीगर शोबों में मुलाजिमतों के लिए 5% रिजर्वेशन को हमवार करने के लिए नजरसानीशुदा पॉलिसी के निफास को कल रियासती काबीना ने मंजूरी दी। इस नजरसानीशुदा पॉलिसी के मुताबिक रिजर्वेशन के अहल खिलाड़ियों को 3 माह के अंदर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की दुरुस्तगी की तस्दीक करनी होगी। सेहत आम्मा के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए काबीना ने कल प्रगति यानि प्राइमरी हेल्थ केयर री इमेजिंड विथ एडवांस्ड गवर्नन एंड एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के निफास को भी मंजूरी दी। इस मंसूबे पर साल 2026 ता 2031 के दौरान अमल दरामद किया जाएगा। मराठा रिजर्वेशन से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लेने और कुनबी मराठा ज़ात सदाकत नामे जारी करने के तरीक़ेकार में दरपेश खामियों और मुश्किलात को दूर करने के लिए

आला सतही कमेटी का एक इजलास आज छत्रपति संभाजी नगर में हो रहा है। रियासती वजीर उदय सामंत ने बताया कि इस इजलास में इलाकाई सतह पर मुख्तलिफ मामलात का जायजा लेने के बाद मजीद कार्रवाई की सिमत का तायुन किया जाएगा। दरियासना हुकूमत ने कुनबी सर्टिफिकेट से मुतालिक मनोज जरांगी की जानिब से किए गए तमाम मतालबात पर मुस्बत मौक़िफ इख्तियार करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया है। लिहाजा मराठा रिजर्वेशन जैली कमेटी के सदर राधा कृष्ण विखे पाटिल ने अपील की है कि जरांगे भी इस मौक़िफ पर इत्मीनान का इजहार करे और हुकूमत के फैसलों पर मुस्बत जवाब दे। विखे पाटिल कल मुंबई में सहीफा निगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि सुबुकदोश जस्टिस शिंदे के मराठवाड़ा दौरे कल से शुरू हुए हैं और उनके दौरों से मजीद हकायक सामने आएंगे। इसी बीच रिजर्वेशन के मतालबे पर अंतरवाली सराटी में गुज़िश्ता 10 दिनों से भूख हड़ताल करने वाले मनोज जरांगे का जालना के ज़िला अस्पताल की एक टीम ने तिब्बी मुआयना किया और सलाइन लगाकर ज़रूरी इमदाद पहुँचाई। ज़िला इंतजामिया की जानिब से उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर से नशर की जा रही हैं। लातूर जिले के शिरूर अनंतपाल तालुके के सुमठाना के सुनील बिरादार नामी नौजवान ने मराठा रिजर्वेशन के मतालबे पर कुएं में कूदकर खुदकुशी करने का दावा किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि मुश्तइल कुंबे के अफराद और गांव के साकिनान ने जारहाना रवैया इख्तियार करते हुए नौजवान की नाश को उदगिर लातूर शाहरा पर वाक़े मोड़ पर रखकर चक्का जाम आंदोलन शुरू किया है। अंबाजोगाई में कल मराठा रिजर्वेशन के लिए मनोज जरांगे की हिमायत में रास्ता रोको एहतियाज किया गया। इस दौरान मुश्तइल अफराद ने लातूर परली अहमदपुर शाहरा को बंद कर दिया, जिसके बाद शाहरा पर कुछ देर के लिए आमदोरफ्त मुतासर हुई। इसी तरह जरांगे की भूख हड़ताल की ताइद में कल परभनी जिले में एक बड़ी व्हीकल रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों कारकुनान ने शिरकत की। सुबुकदोश जस्टिस संदीप शिंदे ने अहल अफराद को कुनबी जात के सर्टिफिकेट जारी करने के अमल को खवायद के मुताबिक दस्तियाब दस्तावेजी रिकॉर्ड नसब और मुतालिका शवाहिद की तस्दीक करके हमवार और शफाफ बनाने के लिए मुतालिका हुक्काम को हिदायत जारी की है। वो कल छत्रपति संभाजीनगर में डिवीज़नल कमिश्नर दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िदा जायदाती इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने देही और तालुका सतह के दफातर को दरख्वास्त गुजारों को दरकार ज़रूरी रिकॉर्ड फराहम करने में ताउन करने की हिदायत भी दी। इसी दौरान बीड़ जिले में आइंदा 11, 15 और 16 तारीख को कुनबी सर्टिफिकेट और ज़ात सदाकत नामे तेज़ रफ्तारी से फराहम करने के लिए खसूसी कैंप लगाने की इत्तला हमारे नुमाइंदे ने दी है। लातूर ज़िले के तमाम तालुका जात में 10 से 17 सितंबर के दरमियान खसूसी कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं। फहरिस्त राय दहिंदगान पर जामे नजरसानी मुहिम के दूसरे मरहले के कामों के सिलसिले में कल नांदेड़ में वोटर रजिस्ट्रेशन अफसरान का एक तरबियती कैंप मुनक़िद हुआ। ज़िला कलेक्टर राहुल करडीले ने हिदायत दी है कि इस मरहले में राय दहिंदों से मौसूल होने वाले दावों और एतराज़ात की तस्दीक करके उन्हें कवायद के मुताबिक फौरी तौर पर फैसल किया जाए। कांग्रेस रहनुमा और साबिक रुकने असम्बली धीरज देशमुख ने लातूर तालुके के करकट्टा और माटेफल में किसानों के खेतों में पहुंचकर बारिश की कमी की वजह से मुतासर फसलों का मुआयना किया। इस मौके पर किसानों ने अपने मसाइल का इजहार करते हुए बताया कि वो गुज़िश्ता साल शदीद बारिश और फसलों के नुकसान के मुआवजे से अभी तक महरूम है। देशमुख ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर मराठवाड़ा समेत लातूर ज़िले के लिए खसूसी राहत पैकेज का ऐलान करे। धाराशिव ज़िले में इस साल बारिश की कमी के सबब ज़रई फसलें और बागात मुतासिर हुए हैं। बीजेपी किसान मोर्चा के रियासती सदर रामकृष्ण वेताल ने बताया कि वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को इस सूरत हाल से आगाह करके मुतासर किसानों को इमदाद फराहम करने की कोशिश की जाएंगी। वो कल धाराशिव तालुके के आम्बेवाड़ी में सोयाबीन की फसल का मुआयना करने के बाद किसानों से बात कर रहे थे। रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्तलिफ इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों और इम्तिहानी अमल से मुतालिक दीगर शिकायात को लेकर मुतालिका उम्मीदवारों ने कल छत्रपति संभाजी नगर के क्रांति चौक इलाके में ज़ोरदार एहतियाज किया। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि MPSC के सदर और सेक्रेटरी की जिम्मेदारियों पर नज़रसानी करके उनकी जगह गैर जानबदार और साफ़ सुथरी शबीह के हामिल अफसरान को

तैनात किया जाए। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की जानिब से कल धाराशिव में एहतजाज किया गया। इस दौरान पार्टी रहनुमा अंबादास दानवे ने रियासती हुकूमत की तरफ से मराठवाड़ा के लिए शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमात मुकम्मल न होने पर हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की। मौसम, महकमा मौसमियात ने आइंदा दो दिनों में कोकण के बेशतर मकामात और वस्ती महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। यूपीआई भारत के फिनटेक सफ़र का हकीकी हीरो है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार ख्याल। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह। हुनरमंद खिलाड़ियों के लिए सरकारी मुलाजिमतों में 5% रिजर्वेशन को हमवार करने के लिए नजरसानीशुदा पॉलिसी को रियासती काबीना ने दी मंजूरी। कुनबी सर्टिफिकेट से मुतालिक मसाइल की यकसोई के लिए आज छत्रपति संभाजीनगर में आला सतही कमेटी का इजलास। और लातूर धाराशिव अदला में ज़रई फसलें और बागात बहरान का शिकार, अवामी नुमाइंदों की जानिब से खसूसी राहत पैकेज का

0: भाई दर्शन सिंह और साथियों से अभी आपने शब्द सुना। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, अब पेश खदमत है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और श्रोताओं, अब वक्त है अतीत में हुई इन प्रमुख घटनाओं के बारे में जानने का जिन्होंने आज के दिन अपनी विशेष पहचान दर्ज की। आज 9 सितंबर है। 1915 में उड़ीसा के कापटेवाड़ा में प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी जतींद्रनाथ सान्याल और अंग्रेजों के बीच संघर्ष भी आज ही की तारीख को शुरू हुआ था। 1920 में इसके 5 बरस बाद अलीगढ़ को एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज

0: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल दिया गया था। 2009 में रेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली शुरू करने की घोषणा की थी और इसके बाद एक साल बाद 2010 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने का निर्णय भी लिया गया था। 2011 की अगर हम बात करें तो श्रोताओं, ये एक महत्वपूर्ण साल है क्योंकि पुरावैज्ञानियों ने एक अवशेष ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिबा का इसी साल में पता लगाया था। ये मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज है जो लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाया जाता था। ये बंदर जैसा दिखता था। वैज्ञानिकों को ऑटिज्म से जुड़े दो अलग अलग जैविक तनाव का पता चला है जिनके बारे में उनका दावा है कि इससे बीमारी के प्रभावी इलाज का विकास हो सकेगा। इन खोजों की तुलना 1960 के दशक में हुई कैंसर के विभिन्न प्रकारों की खोजों से की जा रही है और उम्मीद है कि इनसे ऑटिज्म ग्रस्त बच्चों के संपर्क, सामाजिकरण और अन्य समस्याओं को अधिक सुलभता से और जल्दी से निपटाया जा सकेगा।
1: जी
0: जी। और अब बात करते हैं उन प्रमुख व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। तो इस कड़ी में शुरुआत करते हैं लाला जगत नारायण से। हम याद कर रहे हैं आज उन्हें। वे प्रसिद्ध पत्रकार और हिंद समाचार समूह के संस्थापक थे। वे कांग्रेस और आर्य समाज के प्रसिद्ध कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। लाला जगत नारायण छुआछूत के विरोधी और महिला अधिकारों के पक्षधर थे। 80 के दशक में जब पूरा पंजाब आतंक की आग से झुलस रहा था, उस दौर में भी कलम के सिपाही और देश भावना से प्रेरित लाला जी ने अपने बेबाक लेखन से आतंकियों के मंसूबों को उजागर किया और राज्य में शांति कायम करने के भरसक प्रयास किए। और आज पुण्यतिथि है भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और नाटककार रामवृक्ष बेनीपुरी की। बेनीपुरी जी हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 8 वर्ष जेल में बिताए। इन्होंने कई समाचार पत्र भी निकाले जिनमें वर्ष 1929 का युवक नामक समाचार पत्र प्रमुख है। इसके अलावा आज ही पुण्यतिथि है भारत में दुग्ध क्रांति, जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, उसके जनक माने जाने वाले वर्गीज कुरियन की। भारत को दुनिया का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश बनाने के लिए श्वेत क्रांति लाने वाले डॉक्टर कुरियन को देश में सहकारी दुग्ध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखने का श्रेय दिया जाता है। भारत सरकार ने वर्गीज कुरियन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अलंकरणों से सम्मानित किया। इसके अलावा भी विश्व स्तर पर उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। और हम याद कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र सामने आए, तब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। शासन तंत्र से संबंधित संपूर्ण कार्य अंग्रेजी में ही होता था। ऐसे दौर में भारतेंदु ने देशवासियों के मन के भीतर हिंदी की अलख जगाई, तो इसीलिए वे अपने स्वनाम से ही धन्य हैं अगर हम बात करें तो।
1: जी।
0: और श्रोताओं, आज ही जयंती है भारतीय सिनेमा इतिहास के अग्रणी निर्माता निर्देशक महबूब रमजान खान की। हिंदी सिनेमा जगत के युग पुरुष महबूब खान को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने दर्शकों को लगभग 3 दशक तक क्लासिक फिल्मों का तोहफा दिया। वो युवावस्था में मुंबई आए और एक स्टूडियो में काम करने लगे। महबूब खान ने अपने सिने करियर की शुरुआत वर्ष 1927 में प्रदर्शित फिल्म अलीबाबा एंड 40 थीव्स से अभिनेता के रूप में की। इस फिल्म का ये गीत आपके सामने प्रस्तुत है।

बहुत कम लोगों को ही शगुन पता होगा कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा के लिए महबूब खान का अभिनेता के रूप में भी चयन हुआ था। वर्ष 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया महबूब खान की सर्वाधिक सफल फिल्मों में शुमार की जाती है। सुनते हैं इस फिल्म का ये एक गीत।

आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं।

0: अब खबरें नशर होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप असदुल्ला से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीआई भारत की फिनटेक कामयाबी की एक गैर मुतनाज़े काबिल ज़िक्र दास्तान है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय बरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम पुल करार दिया है। अमरीका ने कहा है कि उसने अपने जंगी जहाज पर किए गए हमलों के बाद खलीज फारस में ईरान के 5 तेल टैंकर्स को तबाह किया है। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा अशिया पर 50% तक जवाबी महसूल आयद कर दिया है। इम्कान है कि 12 से 21 सितंबर के दरमियान जुनूब मगरबी मानसून खत्म होने से पहले वस्ती जुनूबी मशरकी और मगरबी भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। और टेनिस में न्यूयॉर्क में अरियाना सबालिनका और फ्रांसिस टियाफो अमरीकी ओपन के सेमीफाइनल में दाखिल हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फिनटेक में भारत की नुमाया कामयाबी की तारीफ करते हुए कहा कि मुल्क का रुकूम के लेन देन का यूनिफाइड इंटरफेस यूपीआई कामयाबी की दास्तान का एक गैर मुतनाज़े हिस्सा है। मुंबई में फिनटेक आलमी फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये इतने बड़े पैमाने पर तब्दीली है कि जब भी फिनटेक का जिक्र किया जाता है तो ये यूपीआई के बगैर अधूरा रहता है। टेक्नोलॉजी के जरिए तफवीज़ इख्तियारात के अपने बुनियादी फलसफे को दोहराते हुए वज़ीर आज़म ने यूपीआई की माली शमूलियत के एक हतमी आलेकार के तौर पर सताइश की, जो ऐसे शोबों में कामयाबी के साथ दाखिल हुआ जिन्हें रिवायती बैंकिंग तौर तरीकों में नज़रअंदाज कर दिया गया था। वज़ीर आज़म ने इशारा दिया कि सिर्फ अगस्त के महीने में यूपीआई के जरिए 24 अरब से ज्यादा बार रकूम का लेन देन किया गया। भारत के अहम डिजिटल लेन देन के निजाम की आलमी पैमाने पर वसत का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अब यूपीआई का इस्तेमाल 11 मुल्कों में किया जा रहा है, जिसकी वजह से बैन अक्वामी सतह पर रकूम के लेन देन के लिए वो सब कुछ रोजमर्रा की एक हकीकत बन गया है जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बुहरान की इस घड़ी में हमेशा श्रीलंका के साथ है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरका तौर पर तारीख, सकाफत और अकीदे पर मबनी है। जनाब सिंह श्रीलंका की सरकर्दा क्यादत के साथ बातचीत के लिए कल इस मुल्क के अपने पहले 3 रोजा दौरे पर कोलंबो पहुंचे थे। उन्होंने भारतीय बरादरी के साथ बातचीत के दौरान ये रायजनी की। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी तहजीबी और सकाफती रिश्ते हैं जिससे दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम हुई है। भारत और कुवैत ने मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान कल कुवैत में भारत कुवैत दफ्तरी खारजा के 8वें दौर का सलाह मशवरा किया गया। वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी असीम महाजन और कुवैत की उमूर खारजा की वजारत में एशियाई उमूर के असिस्टेंट वजीर खारजा नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। खवातीन और बच्चों की तरक्की की मरकजी वजारत आज वाराणसी में तग़ज़िये के 9वें कौमी महीने 2026 का आगाज करेगी। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर अन्नपूर्णा देवी वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में रुद्राक्ष कन्वेंशन मरकज में इस मुहिम का आगाज करेंगी। नागालैंड भी मुल्क के उन हिस्सों में शामिल हो रहा है जहां नवा राष्ट्रीय पोषण माह 2026 मनाया जा रहा है। समाजी बहबूद का रियासती महकमा सेहत और खानदानी बहबूद के महकमे के साथ मिलकर इस मुहिम को अंजाम देने में सरगर्म है। सड़क ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज गोवा में पोरीवीरम एलिवेटर राहदारी का इफ्तिताह करेंगे। कौमी शाहराह नंबर 66 पर 6 लेन वाले 5 किलोमीटर से ज्यादा के इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 641 करोड़ रुपए की लागत आई है। उम्मीद है कि इससे पणजी और रियासत के शुमाली हिस्से के दरमियान ट्रैफिक और कनेक्टिविटी की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। ये राहदारी आम ट्रैफिक के लिए 11 सितंबर को शुरू कर दी जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की।

जा रही हैं। मगरबी एशिया में कशीदगी बढ़ गई है क्योंकि अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं। इससे खित्ते में मजीद तनाजा के बढ़ने का इम्कान है। अमरीका ने कहा है कि उसकी फौज ने पिछले दो दिन के दौरान अमरीकी बहरी जंगी जहाज पर ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाबी इस्लामी IRGC की तरफ से किए गए हमलों के बाद ईरान के खाम तेल के 5 टैंकरों को तबाह कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने उर्दुन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। अमरीका की मरकजी कमान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले दो दिन के दौरान ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अमरीका के बहरी जंगी जहाज को निशाना बनाने की दो बार कोशिश की, जिसके जवाब में ये हमले किए गए। उधर IRGC ने बहरीन और कुवैत के बंदरगाहों के करीब टैंकरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया। कनाडा ने 600 से ज्यादा अमरीकी अशिया पर 50% तक जवाबी महसूल आयद कर दिए हैं। इस तरह दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान एक तिजारती तनाजे को हवा मिल गई है। अमरीकी अशिया पर यह महसूल कल रात से लागू हो गया है। मुतासिर अशिया में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे मादे, टॉयलेट पेपर जैसी घरेलू लाजमी अशिया शामिल हैं। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने विफाकी एजेंसियों को हुक्म दिया है कि वो कनाडा की अशिया की सरकारी खरीद उस वक्त तक बंद रखें जब तक कनाडा अमरीका के ताजिरों और किसानों को कनाडा की मार्केट में बराबर की रसाई फराहम नहीं कर देता। छत्तीसगढ़ में कनकेर की एक अदालत ने 5 माऊ नवाजों को सजाए कैद सुनाई है। इनमें खतरनाक माऊ नवाज प्रभाकर और उसकी अहलिया राजे कांगे भी शामिल हैं। इन लोगों को यह सजा 2015 में हिफाजती दस्तों पर किए गए एक हमले के केस में सुनाई गई है। प्रभाकर डंडा करनिया खसूसी जोनल कमेटी DKSZC का एक कारिंदा है और उसकी बीवी राजे कांगे डिविजनल कमेटी मेंबर DVCM दर्जे के साथ इस कमेटी से मुंसलिक है। इन दोनों को 7 साल की सजाए कैद सुनाई गई है। इस केस में मुलविस 3 दीगर माऊ नवाजों को 5-5 साल की सजाए कैद सुनाई गई है। ये केस 2015 का है जब माऊ नवाजों के एक ग्रुप ने हिफाजती दस्तों की एक टीम पर हमला कर दिया था। ये टीम कोरर खित्ते में तलाश की कार्रवाई अंजाम दे रही थी। पुलिस अफसरान ने बताया कि प्रभाकर और राजे कांगे दोनों को मजमूई तौर पर तकरीबन 60 फौजदारी मुकदमात का सामना है। छत्तीसगढ़ हुकूमत ने प्रभाकर के लिए 25 लाख रुपए और उसकी अहलिया के लिए 8 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। भारत में जुनूब मगरबी मानसून के खत्म होने से पहले इम्कान है कि एक बार फिर मुल्क के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो। बारिश का यह सिलसिला वस्ती, जुनूबी, मशरकी और मगरबी भारत में 12 से 21 सितंबर के दरमियान जारी रहेगा। मौसमियाती रुझान से पता चलता है कि यह आइंदा बारिश मानसून की वापसी के दौरान आर्जी तौर पर इसके सरगर्म होने की अलामत है, जिसके तहत सितंबर के दूसरे निस्फ में मुल्क के ज्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ छींटा पड़ेगा। जुनूब मगरबी मानसून की वापसी का सिलसिला आमतौर पर शुमाल मशरकी भारत से शुरू होता है। इसके बाद यह सिलसिला जुनूब और मशरक की तरफ चला जाता है। महकमे मौसमियात IMD ने आज बिहार, झारखंड, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। IMD के मुताबिक साहिली आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। अमरीकी ओपन टेनिस में खवातीन के सिंगल्स की दिफाई चैंपियन और आला दर्जे की खिलाड़ी एरिना सबालिन्का सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। उन्होंने एक सनसनीखेज क्वार्टर फाइनल में छठे दर्जे की लिंडा मास्कोवा को शिकस्त दी। सबालिन्का ने कल रात एक जबरदस्त मुकाबले में 7-6, 3-6, 7-6 से कामयाबी हासिल की। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि UPI भारत की फिनटेक कामयाबी की एक गैर मुतनाज़े काबिल ज़िक्र दास्तान है। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय बिरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम पुल करार दिया। अमरीका ने कहा है कि उसने अपने जंगी जहाज पर किए गए हमलों के बाद खलीज फारस में ईरान के 5 तेल टैंकर्स को तबाह किया है। कनाडा ने अमरीका की 600 से ज्यादा अशिया पर 50% तक जवाबी महसूल आयद कर दिया है। और टेनिस में न्यूयॉर्क में
अरियाना सबालिनका और फ्रांसिस टियाफो अमरीकी ओपन के सेमीफाइनल में दाखिल हो गए हैं। इसी के साथ

ते असतं प्रेम। श्रोतेहो, असा हा प्रेमाचा अनमोल मोती प्रत्येकालाच आयुष्यात मिळतो असं तर नसतं ना। आणि ज्यालाही प्रेमाची बहार जीवनात मिळते त्याच्या इतकं नशीबवान कोणीही नसतं। गम के बादलों ने कभी घेर रखा था हमें, गम के बादलों ने कभी घेर रखा था हमें, अब बादलों को चीर के सूरज देता है रोशनी हमें, अब बादलों को चीर के सूरज देता है रोशनी हमें। तन्हा जिंदगी के सफ़र में, तन्हा जिंदगी के सफ़र में मिला साथी अनमोल हमें, खुशनसीब है हम कि मिली है प्यार की बहार हमें।

एक वेगळं जग, एक वेगळाच अनुभव, सुखावणारा तो स्पर्श, सुखवणारे ते एकमेकांच्या सहवासातले क्षण, या सर्व गोष्टींनी बहरलेल्या भारावलेल्या त्या मनाला आता मात्र काहीच नको असतं. फक्त त्या आठवणीत राहावं, त्याच आठवणीत जगावं असं सतत वाटत राहतं. त्याशिवाय आता आपलं जगणं जणू जगणंच नाही असं जाणवायला लागतं. ना चैन है ना करार है, ना चैन है ना करार है, सुना सुना सा है सब, सब कुछ वीरान है. सुना सुना सा है सब, सब कुछ वीरान है. एक अजब सी कश्मकश में हूँ, एक अजब सी कश्मकश में हूँ, सब कुछ है पास मेरे फिर भी अकेला हूँ. सब कुछ है पास मेरे फिर भी अकेला हूँ. सारी रात न सोया हूँ, सारी रात न सोया हूँ, बस तेरी ही यादों में खोया हूँ, बस तेरी ही यादों में खोया हूँ.

0: गुजरात से।
1: गुजरात से बात कर रहे हैं जी। अच्छा, बहुत दूर से आपने फोन लगाया हमारे प्रोग्राम में।
0: जी, हमारा एक ग्रुप है ताई आकाशवाणी फोन इन एकता ग्रुप, तो हमारे जो श्रोता भाई जानते हैं कि फोन इन कार्यक्रम परभणी में आने वाला है, तो उसमें अपडेट डालते हैं
1: वाह,
0: प्रसारण समय और रिकॉर्डिंग का समय, तो हम जुड़ते हैं, तो हमारे लिए एक अच्छी बात है। और इसके साथ श्रोताओं का जो यानी एक मिलन हो जाता है व्हाट्सएप के जरिए, और हमें आकाशवाणी परभणी का जो प्रसारण वो भी सुनने को मिलता है इस माध्यम
1: अच्छा
0: से।
1: अच्छा तो फिर आपने आज तो फोन लगाया, इसका प्रसारण भी आप सुनते हो?
0: नहीं, अभी आज मैं रिकॉर्डिंग करवाया, तो अभी हमारा प्रसारण समय है वो देख के मैं सुनूंगा, पूरा
1: अच्छा।
0: फोन इन कार्यक्रम सुनूंगा। अगर नहीं सुन पाया, कभी कभार अगर हम ड्यूटी भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं,
1: अच्छा।
0: तो हमारा ग्रुप में ऐसे भी श्रोता है जो पूरा कार्यक्रम डाउनलोड करते हैं फिर ग्रुप में रखते हैं। दीदी
1: वाह, ये सुनकर तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि इतने पैशनेटली लोग सुनते हैं प्रोग्राम और एक दूसरे को भेजते हैं। सही में बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा लगा, और दीदी हमें क्या है, एक आत्मीयता हो जाती है श्रोताओं से, अनाउंसर से, और कई अनाउंसर तो हमको पहचान भी जाते हैं कि आप फलाने गांव के हैं,
1: अच्छा
0: फलाना नाम, यानी
1: अच्छा
0: एक आत्मीयता का सेतु बन गया है आकाशवाणी।
1: सही में सही में। तो
0: जी,
1: आप बोले कि आप नौकरी करते हैं, कहाँ पर करते हैं आप जॉब?
0: मैं अहमदाबाद रहता हूँ, मैं वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में
1: अच्छा
0: सुरक्षा डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ, और समय मिलने पर आकाशवाणी के जो हमारे न्यूज ऑनर ऐप है उसे प्रसारण सुनते हैं और फोन भी लगाते हैं। ज्यादातर रुचि मुझे फोन इन में है। पहले हम पत्र लगते थे, पहले जमाने में जब मोबाइल नहीं थे तब, लेकिन अभी एक सबल माध्यम आ गया है तो फोन से जुड़ते हैं। दीदी
1: वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमारा एक फेसबुक पेज भी है, तो उसे भी आप फॉलो कीजिए।
0: जरूर मैं फॉलो करूंगा, और अगर मुझे कोई भी कार्यक्रम अच्छा लगेगा या सुनने वाला हूं
1: हाँ
0: तो मैं उसको लाइक भी करूंगा, और मुझे जितनी भी यानी अपने सूझबूझ है उसके अनुसार मैं कमेंट भी करूंगा।
1: आपकी प्रतिक्रिया देते रहना, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों से प्रतिक्रिया जब मिलती है। अच्छा भी लगे, बुरा भी लगे, आपको कुछ पसंद आए ना आए ये भी आप बताते जाइए, तो हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम करने की सोचते रहते हैं कि आप लोगों के लिए वो पसंदीदा हो जाए। इसके लिए हमेशा हम प्रयत्नरत रहते हैं कि कुछ तो अच्छा देना चाहिए, कुछ तो अच्छा देना चाहिए, तो बताते जाइएगा।
0: जी, आकाशवाणी के जो अनाउंसर है, आप लोग जो हमारे श्रोताओं के जो कमेंट है, पत्र है, जो उसमें आप बोलते हैं कि आपको पसंद है या नहीं पसंद, तो आप एक हमारे श्रोताओं को एक आप एक हमको एक शिक्षक के तौर पर गिनते हैं, तो हमारे लिए भी अच्छी बात है और आपकी महानता भी है।
1: अरे धन्यवाद। तो
0: जी,
1: आज प्रोग्राम में क्या सुनेंगे आप, कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: आज गाना सुनना है मुझे फकीरा फिल्म का, गाने के बोल है दिल में तुझे बिठाकर, लता मंगेशकर की आवाज में।
1: बहुत बहुत बढ़िया गीत है लता मंगेशकर जी का, ये बहुत पुराना गीत है लेकिन अभी भी एवरग्रीन गीत में इसे काउंट किया जाता है। बहुत ही अच्छा गीत आपने
0: ताई,
1: बताया।
0: मुझे ऐसे कई गाने जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो मुझे आज भी यानी वो गाने मैं सुनता हूँ आकाशवाणी में हरदम, तो कई श्रोता मेरे को बोलते भी कि बार बार ऐसे गाने क्यों सुनते, लेकिन मुझे गाने सुनने का मन ऐसे करता है कि जो हमारा संगीत है, जो उनकी आवाज की है, जो लता दीदी की आवाज है
1: हाँ
0: यानी संगीत है, यानी एक तालमेल के एक गाना बनता था और अभी भी बन रहे, लेकिन वो जो लता दीदी के सुर में जो मधुरता थी अभी फिलहाल
1: सही।
0: हमें नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे बहुत शौक है पुराने की फिल्म गीत का। और आप लोग अनाउंसर भी जो पुराने हैं उनको भी पता है कि ऐसे गाने में इतनी मधुरता है, तो हमें मन को सुकून मिलता है, कभी
1: सही
0: कभी हम नहीं सो पाते तो नींद भी आ जाती है।
1: सही सही, इसीलिए वो गाने अभी तक एवरग्रीन है।
0: जी, और आपने जो समय होने के बाद भी कॉल उठाया ताई, मैं अगर हो सके तो आपका नाम जान सकूं, आपको
1: हाँ,
0: अगर इजाजत हो।
1: सुषमा कुलकर्णी नाम है मेरा।
0: सुनमा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
1: हाँ
0: क्योंकि एक विचार वाले श्रोता और अनाउंसर होते हैं तो बात में जमावट हो जाती है, और आज जमावट भी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी, आपने फोन किया इसलिए। प्रोग्राम सुनते रहिएगा और बताते रहिएगा आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए।
0: जी, धन्यवाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
1: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसनायका से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर

0: पर काम करते रहेंगे। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अमरीका की जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचा 1:05 झालेली आहे। आता चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम गीत बहार। चंद्रमुखी या सिनेमातली लावणी आहे। सुरुवातीची श्रेया घोषाल यांनी गायलेली, गुरु ठाकूर यांची, संगीतकार अजय अतुल।

0: तयार होतात. हे गवताळ प्रदेश पृथ्वीच्या एकूण भूभागाचा सुमारे 33% भाग व्यापतात आणि अंटार्क्टिका वगळता प्रत्येक खंडावर त्याचे अस्तित्व आहे. भारतातील गवताळ प्रदेश देशाच्या एकूण भूभागाच्या सुमारे 24% भाग व्यापतात आणि बहुवार्षिक गवताचे प्राबल्य असलेले हे प्रदेश अत्यंत महत्त्वाचे नैसर्गिक अधिवास मानले जातात. भारतातील काही मोजक्या उरलेल्या सवाना गवताळ परिसंस्थांपैकी महत्त्वाचे प्रदेश महाराष्ट्रात आहेत. आता आपण गवताळ प्रदेशांची वैशिष्ट्ये जाणून घेऊया. विस्तीर्ण आणि मोकळा परिसर, गवत कुलातील वनस्पतींचे प्राबल्य, भरपूर सूर्यप्रकाश, कीटक, फुलपाखरं आणि इतर इनव्हर्टिब्रेट्स जीवांची मोठी संख्या, विविध प्रकारच्या बिया आणि धान्यांची उपलब्धता आणि हा सर्व परिसर पक्ष्यांसाठी अत्यंत अनुकूल असा अधिवास. गवताळ प्रदेशातील जैविक आणि अजैविक घटक कोणते हे आपण आता पाहूया. जैविक घटक तर सर्वात प्रथम येतात उत्पादक म्हणजे प्रोड्युसर्स. गवताळ प्रदेशात प्रामुख्याने गवत हेच मुख्य उत्पादक असतात. काही औषधी वनस्पती, लहान झुडपे देखील प्राथमिक जैवभार म्हणजे बायोमास निर्मितीत योगदान देतात. मग येतात भक्षक म्हणजे कन्झ्युमर्स. गवताळ प्रदेशात भक्षकांचे 3 मुख्य प्रकार असतात. प्राथमिक भक्षक म्हणजे प्रायमरी कन्झ्युमर्स. हे सर्व शाकाहारी प्राणी असतात जे थेट गवतावर उपजीविका करतात, जसे चरणारे सस्तन प्राणी, गाई, शेळ्या, मेंढ्या, हरणं, ससे, म्हशी इत्यादी. काही कीटकं, वाळवी आणि अळ्या हे प्राथमिक भक्षक आहेत. नंतर प्रकार पडतो द्वितीय भक्षकांचा म्हणजे सेकंडरी कन्झ्युमर्सचा. हे सर्व मांसभक्षी प्राणी असतात जे प्राथमिक भक्षकांवर.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई. ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी. पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान. और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया. अब समाचार विस्तार से. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिक्सानायके से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई. श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे. ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है. ये कल भी जारी रहेगी. इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण. इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं. केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में इस बैठक से पहले पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की. भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है. भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है. विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है. टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं. इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटा

0: बचाने का काम जारी रखा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,365 हो गई है। बचाव दल 5,326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
2: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है। इसमें राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनवाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके निर्माण की। वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
0: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जन सेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
3: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार

0: भावनात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
1: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
0: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
1: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
0: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जाँच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जाँच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुद्दुचेरी में तट्टान सावड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा

0: की संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस डियाफो से होगा। दोनों अमरीकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत। आता शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम नादब्रह्म। आज संजय उपाध्ये यांचं व्हायोलिन वादन आपल्याला ऐकवत आहोत, राग गौडमल्लार व्हायोलिनवर। त्यांना तबल्याची साथ मंगेश करमरकर यांनी केलेली आहे। ऐकूया संजय उपाध्ये यांनी व्हायोलिनवर वाजवलेला राग गौडमल्लार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार देसानायक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के कल्याण और विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के उपायों पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति देसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। वित्तीय आसूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिटयूनिक्स, डिजी फिनेक्स, पायोनेक्स, व्हाइट बिट, फिक्स फ्लोट और टू बिट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थाओं को देश में अवैध रूप से संचालित एप्लीकेशन और यूआरएल हटाने का भी निर्देश दिया गया है। कीनिया के शिक्षा और तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज पंजाब और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के मानवाधिकार आयोग का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य मानवाधिकारों को शिक्षा, युवा कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण से जोड़ने के भारत के अनुभवों को साझा करना था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राजस्व आसूचना निदेशालय ने पिछले 2 सप्ताह के दौरान देश भर में चलाए गए अभियानों में लगभग 740 किलोग्राम गांजा और चरस जब्त किया है। एजेंसी ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17

0: स्वर्णिम चतुर्भुज मार्गस्य चतुष्पथीकरणाय च स्वीकृति प्रदत्ता। श्रीलंका वायुसेनायाः L-70 प्रक्षेपकाणां आधुनिकीकरणाय भारत श्रीलंका सैन्य संधि हस्ताक्षरितंगतः। स्वभूमि भारत विरोधी कृत्येभ्यः न प्रयुज्यते इति कोलंबो प्रशासनेन आश्वासितम्। आगामिनः ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य पूर्वांग रूपेण मुंबईयां ब्रिक्स वित्तमंत्रिणां केंद्रीय बैंक नियामकानां च अंतिमा महत्वपूर्णा संगोष्ठी सांप्रतं प्रचलति। चीनदेशस्य शंघाई नगरे आयोज्यमानायां विश्व कौशल स्पर्धायां भारतं प्रथमवारं एकादशसु नवीनासु कौशल श्रेणीषु भागं ग्रहीष्यति। अपि च अहमदाबादे प्रचलन्त्याः विश्व दिव्यांग धनुर्क्रीडायाः अन्तिमे दिवसे भारतेन उत्कृष्ट प्रदर्शनेन द्वे स्वर्ण पदके चत्वारि च कांस्य पदकानि स्वायत्ती कृतानि। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलं रेल सञ्जालस्य अभूतपूर्व विस्ताराय क्षमता संवर्धनाय च 20,000 कोट्यधिक रूप्यकाणां व्ययेन निर्मीयमानेभ्यः 8 बहुपथ रेल प्रकल्पेभ्यः स्वाकृतिं प्रादात्। नवदिल्ल्यां संवाददातृन् संबोधयन् सूचना प्रसारण रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवः प्रावोचत् यत् एतेषु प्रथमचरणे पश्चिम बंगाल झारखंड ओडिशा मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राज्येषु व्याप्त 14 मण्डलेषु नूतन मार्गस्य निर्माणं विधास्यते। अस्मिन् खड़गपुर झारसुगुड़ा चतुर्थपथः कटनी पेंड्रा रोड चतुर्थपथः तथा बिलासपुर पेंड्रा रोड तृतीयपथः समाविष्टाः सन्ति। अनेन सहैव मंत्रिमण्डलेन तमिलनाडु आंध्रप्रदेश कर्नाटक तेलंगाना राज्येषु 45-500 किलोमीटर परिमित विस्ताराय 21,000,000,000 कोटि रूप्यकाणां अन्य 5 परियोजनाः अपि अनुमोदिताः। मन्त्रिणा सविशेषं प्रख्यापितं यत् सर्वकारेण देशस्य 7 सान्द्रता रेल वीथीनां चतुष्पथीकरणं विधातुं निर्णयः गृहीतः। एतेषु देहली हावड़ा मुंबई हावड़ा दिल्ली मुंबई दिल्ली गुवाहाटी दिल्ली चेन्नई हावड़ा चेन्नई तथा मुंबई चेन्नई इति 7 प्रमुखाः मार्गाः सन्ति येन रेलयान विलंबस्य समस्या मूलतः विनक्ष्यति।
1: रेलवे की मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं उन सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई मुंबई से चेन्नई चेन्नई से कोलकाता कोलकाता से वापस मुंबई ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
0: भारतस्य रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य कोलंबो नगरे श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिना अनुरा कुमार दिसानायके इत्यमुना सह महत्वपूर्णां मंत्रणां व्यदधात्। उपवेशनावधौ उभौ नेतारौ प्रत्यपादयतां यत् उभावपि देशौ निकट प्रतिवेशिनौ सामुद्रिक सहयोगिनौ च स्तः इति हेतोः भारतं श्रीलंका च उभयोः राष्ट्रयोः समग्र विकासाय जनकल्याणाय च परस्पर सहयोगं सातत्येन निर्वहिष्यतः। सामाजिक संचारपटले रक्षामन्त्रिणा न्यरूप्यत यतस्मिन् क्षेत्रे सुरक्षायाः स्थैर्यस्य शान्तेः समृद्धेः च संवर्धनाय उभौ देशौ संयुक्ततया कार्यं विधास्यतः। रक्षामन्त्री ह्यः त्रिदिवसीय यात्रायाः अङ्गतया कोलंबो नगरं सम्प्राप्तवान्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह रक्षा विदेश मंत्रालययोः वरिष्ठाधिकारिभिः समन्वितस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलस्य नेतृत्वं विधत्ते। रक्षामंत्रिणः हार्दिकं स्वागतं व्याहरन् श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिः दिसानायके भारतस्य प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह स्वकीयं पूर्वतनं संवादं सस्मार। अथ च दृढतया पुनरुद्घोषयत् यत् श्रीलंका स्वकीयायाः भूमेः उपयोगं भारतस्य सुरक्षाहितान् बाधमानानां शत्रुतापूर्णगतिविधीनां कृते न कदापि अनुमंस्यते। अवसरेऽस्मिन् उभयतः श्रीलंका वायुसेनायाः कृते L-70 प्रक्षेपास्त्राणाम् उन्नयनाय च द्वयोः देशयोः NCC NDC इत्यनयोः च मध्ये सहयोगाय सहमतिपत्राणां

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: हसू तुमची ओळख, पण हे हसू निरोगी आहे ना? दातांची स्वच्छता, हिरड्यांची काळजी आणि नियमित दंत तपासणी हे फक्त सुंदर हास्यासाठी नाही तर निरोगी आयुष्यासाठीही अत्यंत महत्त्वाचं। दातांचं आरोग्य निरोगी आयुष्याची गुरुकिल्ली या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत डेंटिस्ट डॉक्टर अनघा मुळे।
3: ब्रशिंगची पद्धत शिकून घ्यावी आणि आहारामध्ये चांगल्या प्रकारे फायबर्स, कमीत कमी साखर, कमीत कमी ऍसिड ड्रिंक्स हे ठेवल्यामुळे हाडाचं, हिरड्यांचं आणि दातांचं आरोग्य चांगलं ठेवता येतं। आणि इयरली फॉलोअप ह्या काही गोष्टी आहेत, ह्या सगळ्या वयाच्या लोकांना सतत आणि सेम प्रकारे लागू पडतात,
2: तेव्हा अवश्य ऐका आरोग्य दर्पण। सहभागी होत आहेत तज्ज्ञ डॉक्टर अनघा मुळे। आणि हो, त्याआधी कोमल कुंभार लिखित आपुलकी या घरात ही कौटुंबिक श्रुतिका ऐकायला अजिबात विसरू नका।
4: आमची यानंतरची उद्घोषणा लगेचच प्रसार भारतीच्या वेव्स OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ऍप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची हे आहे अस्मिता वाहिनी। यानंतर ठीक 7 वाजता प्रादेशिक बातम्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीटैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया, कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

0: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
0: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
0: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनवर कुमार दिसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
5: आज मेरी हेज एक्सलेंसी प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को

0: और स्ट्रेंथन करने को कंट्रीब्यूट करेगी।
1: श्री राजनाथ ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास, सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में एनडीआरएफ का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
1: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने ये बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
6: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। UK MTO ने पुष्टि की है कि गई

0: बाद कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
1: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
2: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन की मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
1: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states to boost connectivity. New Delhi and Colombo sign MOUs on upgradation of L-70 guns and defense cooperation. Sri Lanka assures it will never allow its territory to be used against India. India condemns attacks by Yemen's Houthi rebels on Saudi Arabia, says strikes threaten freedom of navigation in Bab al-Mandeb Strait. In sports, India end campaign at stage 3 of World Archery Para Series with 15 medals, comprising 4 gold, in Ahmedabad. And in Junior Asia Cup hockey, Indian men's team enters semi-final with 15-0 victory over Chinese Taipei. Indonesians advance to quarter-final after goalless draw against hosts China. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 kilometers and are expected to

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है संपूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाटिया कॉल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब एक पौधा मिट्टी में गहराई तक अपनी जड़ें जमाता है तभी उस पर फल और फूल लहलहाते हैं। ठीक वैसे ही जब किसी राष्ट्र की भावी पीढ़ी सेहत और पोषण से परिपूर्ण होती है तभी वो देश आर्थिक और सामाजिक प्रगति के शिखर को छूता है। इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए देश भर में गूंज रहा है एक नया संकल्प, नौवा राष्ट्रीय पोषण माह 2026। और इस बार हमारा मूल विचार है पोषण से समृद्धि। बाबा विश्वनाथ की पवित्र नगरी वाराणसी से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का बिगुल बज चुका है, लेकिन इसकी तरंगे देश के हर गांव, हर शहर और हर घर तक पहुंचनी है। सवाल ये है कि क्या हमारी थाली सिर्फ भूख मिटा रही है या देश की समृद्धि की नींव भी रख रही है। बाल कुपोषण और एनीमिया के आंकड़े आज भी हमसे एक गंभीर संवाद की मांग करते हैं। इन्हीं नीतिगत पहलुओं, शोध और चिकित्सीय समाधानों पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रही हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की पोषण विशेषज्ञ प्रोफेसर नीना भाटिया कॉल और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: डॉक्टर भाटिया, आपके साथ शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि बाल कुपोषण के कारण भारत को अपनी जीडीपी का लगभग 3-11% का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ये जो वाराणसी से अभियान शुरू हुआ है

0: पोषण से समृद्धि। इसके तहत खाद्य सुरक्षा को केवल पेट भरने तक सीमित नहीं रखा गया है, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता और आर्थिक उत्पादकता को भी शामिल किया गया है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस अभियान को आप कैसे देखती हैं और इससे कितना बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद है।
1: जैसा कि हम सब जानते हैं कि केवल पेट भरने को पोषण नहीं कहा जा सकता, और जो अभी एक बदलाव आ रहा है इस पोषण की लड़ाई में हमारी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सभी पोषक तत्वों को, जिसमें कि हमारे मेन मेजर पोषक तत्व जिसमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा को इंक्लूड करना है, उसके अलावा साथ ही जो विटामिन और मिनरल युक्त पदार्थ हैं, जिनमें की प्रमुख रूप से आयरन, जिंक, विटामिन ए और कई विटामिन और मिनरल्स को शामिल करना बहुत जरूरी है। जब पोषक पदार्थों की कमी रहती है तो बच्चे के मानसिक विकास में भी कमी आती है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक क्षमता और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट IQ भी कम रह जाती है, और उसकी बड़े होकर कमाने की क्षमता कम होती है, जिससे कि देश के विकास में, जो आपने बताया, GDP में 3-11% कमी आ जाती है। और इसके लिए जरूरी है कि सभी पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में सम्मिलित किए जाएं। इस दिशा में डाइट्री डाइवर्सिटी, जो आहार में विविधता के प्रिंसिपल को अपनाकर सभी स्टेट्स अलग अलग पोषक पदार्थों को, जिसमें कि मोटा अनाज, दालें और पोषण वाटिका के थ्रू सब्जी और फलों को इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि एक पूरा पूर्ण पोषण मिलेगा और सभी तरह की जो कमियां हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमिया और जो अधिक कुपोषण की समस्या है, उसको कम किया जा सकेगा, और देश के, पहले तो देश के नागरिकों और बच्चों के विकास में, और उससे देश के आर्थिक विकास में ये एक बड़ा कदम है।
0: आपसे समझना चाहेंगे कि गर्भाधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन के पहले, यानी पहले 1000 दिन में सही डॉक्टरी सलाह और पोषण देकर इस स्थिति को कैसे पलटा जा सकता है।
2: इसका जवाब सिर्फ डॉक्टर दे दें कि हाँ आप ये कर लो, आपको भी पता है अगर डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं तो बहुत बार ना हम उस एडवाइस को 100% मानते नहीं है। सबसे जरूरी ये है कि जैसे माँ शिशु और जो माँ है, दे आर नॉट इंडिविजुअल नहीं है, एक फैमिली का पार्ट होते हैं। तो जो मदर है, सबसे पहले जो माँ का पोषण है और आयरन का स्टेटस है, मैडम ने बोला अनीमिया हो जाता है, जिंक की डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, हमें ये ध्यान रखना है कि जो माँ है वो सक्षम होनी चाहिए एक गर्भ कैरी करने के लिए, एंड इसीलिए हमारी जो प्रेगनेंसीज हैं वो प्लान्ड होनी चाहिए। और जो हम फोलिक एसिड की बात करते हैं, वो प्रेगनेंसी के बाद नहीं, वो प्रेगनेंसी से पहले लेना शुरू करना चाहिए। अनीमिया की जांच सही टाइम पे होनी चाहिए, ANC विजिट टाइम से होनी चाहिए, ताकि एक गायनेकोलॉजिस्ट उनका वेट गेन और मदर ठीक ठाक कर रही है या नहीं कर रही, बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो शुरुआत वहां से होती है। फिर उसके बाद आती है बारी कि जब बच्चा पैदा हुआ, पहले 6 महीने में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चे की जिंदगी के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए, वो है स्तनपान करना। वो अभी भी, मतलब हमारे देश में क्या, इवन वर्ल्ड में भी बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है, बट हमारा देश में उस आंकड़े को बढ़ाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है एज डॉक्टर्स। बहुत सारी माएं, मैं गरीब तबके के सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रही, इवन एजुकेटेड मदर्स जो हैं, जो पढ़ी लिखी माएं हैं, उनको भी कन्विंस करना कि आप बच्चे को 6 महीने तक अपना दूध दें, वो भी उनको समझ नहीं आता है कि दूध पिलाना चाहिए। तो हमें इसके लिए भी बहुत काम करना पड़ेगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करें। फिर आती है बारी 6 महीने से 24 महीने। अब माओं को लगता है कि 6 महीने दूध पिलाना है, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि 6 महीने पे आप बच्चे का माँ का दूध छुड़वा दीजिए। बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पीना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ माँ का दूध पी रहा है। अगली बाधा आती है कि जब हमें उनको खाना देना है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि दाल का पानी दे दो, चावल का पानी दे दो, सूप दे दो, ये सब चीजें ठीक नहीं है बच्चे के लिए। तो हमें ये भी जानना है कि उनको सही मात्रा में सही प्रकार का खाना, जो कि ऊर्जा संघन जो आहार होता है, अलग अलग, जैसे मैडम ने डाइटरी डाइवर्सिटी की बात करी, वो खाना बच्चे के 6 महीने पे शुरू करना है। अगर मांस मछली आप खाते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं 8-9 महीने पे, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। और एक जो माँ सोचती है ना कि चलो अब मैं दूध नहीं पिलाऊंगी और गाय का दूध पिलाना है, गाय का दूध दो साल से पहले बच्चे के लिए तो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पिलाना चाहिए, उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। और सिर्फ डॉक्टरी सलाह से ना नहीं चलता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग एक सोशल प्रॉब्लम भी है। बहुत सारी माएं अब जैसे गर्भ अवस्था में उनको परिवार से सपोर्ट मिला, अब सास को भी लगता है, नानी को भी लगता है कि चलो अब तो हमने कर दिया, अब हम बच्चा पालते हैं।

0: तुम घर का काम करो ये बहुत जरूरी है ये मेंटालिटी हमें इंडियन हाउसहोल्ड से ये मेंटालिटी हटानी है माँ और बच्चा एक डायड है उनको प्यार की और उनको सपोर्ट की बहुत जरूरत है
1: डॉक्टर भाटिया अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं वाराणसी और पूर्वी यूपी के संदर्भ में अगर हम देखें तो बाजरा रागी और स्थानीय पारंपरिक अनाजों को दैनिक आहार में शामिल करके पोषण सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ कैसे मजबूती दी जा रही है
2: जैसा कि हम जानते हैं कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम लोग सब भी मोटे अनाज को रेगुलर रूप में मतलब डे टू डे डाइट में हम इंक्लूड करते थे और अब ये जो एक अश्री अन्न करके प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज को फिर से एक सम्मान दिया है और उसको सेंटर में लाया है उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि ये बहुत कम पानी में और बहुत कम उपजाऊ जमीन पर भी उग जाते हैं और जैसे आपने कहा कि अगर पैसे की कमी है तो भी ये परिवार में अवेलेबल रहते हैं और इनमें कई पोषक तत्व काफी अधिक मात्रा में मिलते हैं जैसे कि रागी जो है वो कैल्शियम और बाजरा जो है वो आयरन में भरपूर मात्रा में इनमें मिलता है तो इसी तरह के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले जिन्हें हम मिलेट्स आम भाषा में कहते हैं वो अगर हम इंक्लूड करेंगे बच्चों के खाने में गर्भवती महिलाओं के और पूरे परिवार के खाने में तो ये हमारे कई पोषक तत्व खास करके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फाइबर और इनसे इनफैक्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो बाद में ओवरवेट ओबेसिटी डायबिटीज और ऐसी बीमारियां भी होती हैं उनसे भी बचाव मिलेगा तो छोटे छोटे किसानों के द्वारा उगाकर और लोकल प्रोक्योरमेंट के जरिए जो सरकार जैसे खासकर यूपी में और कई जगह और इसको इंक्लूड करने की बात कर रही है ये एक डबल कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी है जिसमें कि किसान अपनी छोटी जमीन पर इसको उगा भी सकते हैं ये सस्टेनेबल होते हैं क्योंकि ये कम पानी में उगते हैं और हार्श कंडीशंस में भी ये उग सकते हैं और इनको लोकल प्रोड्यूस की तरह इस्तेमाल करने से हम जो खाना दे रहे हैं अभी जो इनफैक्ट जो हम खाना दे रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करके ये अधिक पोषक तत्व वाले को देने से हमें पोषण लाभ भी मिलेगा और ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा।
1: डॉक्टर अनु अगर आपसे हम समझने की कोशिश करें कि शुरुआती 6 महीने तक केवल स्तनपान न कराने के पीछे आप किस तरीके का डर देखती हैं या सामाजिक बाधाएं देखती हैं और अगर स्तनपान के दर को बढ़ाया गया तो नवजात मृत्यु दर को घटाने में क्या भूमिका हो सकती है
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर माँ अवेयर है बच्चे को 1 घंटे में माँ दूध पिला सकती है माँ को उठने की भी जरूरत नहीं है माँ लेटे लेटे बच्चे को दूध पिला सकती है एंड जो रुकावट है ना वो मानसिक ज्यादा है रादर देन एक्चुअल प्रॉब्लम तो सिजेरियन के बाद जो डिलीवरी होती है जैसे सपोज हम माने कि 20-30% सिजेरियन डिलीवरी है तो मेरे को नहीं लगता कि इनमें से कोई भी अपना ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो वो आंकड़े वैसे ही कम हो गए दूसरी चीज ये कि दादी और नानी एंड जो घर के बड़े हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है कि जो कोलोस्ट्रम माँ का पहला दूध जो बच्चों को देते हैं वो उसको नहीं पिलाने देती हैं वो बच्चा ले जाती है वो चाय पिलाएंगी गुट्टी पिलाएंगी वो पारिवारिक हनी जो होता है शहद पिलाना है क्योंकि रस्में पूरे करना ज्यादा जरूरी है हमें ये मानना पड़ेगा हमें थोड़ा सा ना निकलना पड़ेगा हमें थोड़ा एजुकेशन और इन सब चीजों से मदर को अवेयर करना पड़ेगा और फीमेल एम्पावरमेंट की जो आप बात कर रहे हैं ना कि अगर माँ ठीक नहीं है अगर बच्चे का पोषण ठीक नहीं है तो आगे जाके दिमागी जो कैपेसिटी है बच्चे की वो तो डेफिनेटली कम होगी अगर बच्चे को पहले 2 साल में आयरन की कमी है जिंक की कमी है थायराइड की कमी है कोई भी बीमारी है कोई भी न्यूट्रिशनली भी रिलेटेड कुछ डेफिशिएंसीज है जैसे B12 डेफिशिएंसी है उसका बहुत ज्यादा दिमाग पे बच्चे के असर पड़ता है एंड आगे जाके जैसे नीना मैम ने बोला कि आगे जाके उनकी अर्निंग कैपेसिटी उनकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी ये सारा प्रॉब्लम होता है तो ये जो ब्रेस्ट फीड ना करने की प्रॉब्लम है ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि सिर्फ फैमिली वाले नहीं है इवन डॉक्टर्स भी माँ को बोल देते हैं कि नहीं तुम अपना दूध मत पिलाओ तो हमें अपने डॉक्टर्स को भी थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा कि वो माँ को ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि तुम्हारे दूध से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो माँ की जो मिसकंसेप्शंस है इसको हटाना बहुत जरूरी है और अगर हम न्यूट्रिशन ठीक रखेंगे तभी हमारे बच्चे दिमागी तौर पे फिजिकल तौर पे बच्चे इकोनॉमिकली वायबल सिटीजंस बनेंगे और जिन बच्चों को पहले 2 साल में अगर खाना ठीक से नहीं मिलता है आयरन की कमी होती है वो बच्चों की IQ पॉइंट्स तो कम होते ही हैं। एक और चीज बोलना चाहूंगी, हम सारे माँ बाप हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की आईक्यू बहुत बढ़िया हो, नीट जेई निकाले, बच्चे बढ़िया बढ़िया कॉलेज में जाएं। अगर

0: अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसके आईक्यू पॉइंट्स में 20-30% की बढ़त हो सकती है. तो बहुत जरूरी है कि माएं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं क्योंकि वो दिमागी डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत बहुत जरूरी है.
1: जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि जितने भी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे और उनमें बहुत सारी संख्या महिलाओं की भी होंगी, तो डॉक्टर अनु जो सलाह दे रही हैं उस पर आप जरूर गौर कर रही होंगी. डॉक्टर भाटिया, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो पोषण ट्रैकर ऐप है उस पर 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का रियल टाइम डेटा पंजीकृत है. सवाल उसी से जुड़ा है, नीति निर्धारण के स्तर पर इस विशाल डेटा का उपयोग जरूरत से ज्यादा कुपोषित बच्चों की पहचान करने और टारगेटेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी बनाने में कितना प्रभावी सिद्ध हो रहा है?
2: ये जो पोषण ट्रैकर अभी 2021 से लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, ये एक बिल्कुल रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहा है. और इससे जो पहले आंगनवाड़ी वर्कर को वजन लेना था, फिर उसको प्लॉट करना है, फिर वो डेटा कंपाइल होगा, वो सारा टाइम लैग रिड्यूस होकर एक बहुत इजीली उसको जो अति कुपोषित बच्चे हैं जिन्हें हम सैम और मैम बच्चे कहते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनको पहचानने में बहुत ही मदद होती है. और उन तक जो अतिरिक्त राशन पहुंचाने की प्रक्रिया है उसमें भी इससे बहुत मदद हो रही है. और इनफैक्ट जो इतना सारा डेटा है जिसमें हम सिर्फ ना कि बच्चों को चिन्हित कर सकते हैं मगर उनकी होम विजिट, उनकी और एक्स्ट्रा केयर के लिए भी प्रयास किया जा रहा है. अभी होम विजिट्स में और इनकी ग्रोथ के साथ साथ उनकी डेवलपमेंट के लिए 34 इंडिकेटर्स को पहचाना गया है और उस पर ट्रेनिंग हो रही है. तो ये एक जो टूल है प्लानिंग के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर के काम के लिए और आपस में जो आशा और ANM वगैरह से मिलके काम करने के लिए इन एप्स को आगे और विकसित किया जा रहा है. सो मैं ये सोचती हूँ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिससे हम हर बच्चे को, पहले अभी तक हम बात करते हैं कि इतना कुपोषण है, इतने परसेंट है, मगर यहाँ हम हर एक को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रैक कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को देख सकते हैं और उसकी वजन और उसकी हाइट और ग्रोथ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनके हिसाब से एक एक बच्चे के लिए इंडिविजुअली एक्शन लिया जा सकता है.
1: डॉक्टर अनु, जो बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं और उनका इलाज भी किया जाता है, पोषण पुनर्वास केंद्रों की भूमिका इसमें अहम होती है. अब सवाल ये उठता है कि जब बच्चे का इलाज घर पर एम्बुलेटरी केयर के तहत होता है या फिर रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड यानी RUTF से किया जा रहा है, तो माता पिता को बच्चे के खान पान, दवा और देखभाल को लेकर किन जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
0: एक्चुअली जो न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर है हमारे भी अस्पताल में NRC, अगर आप वहाँ पे देखेंगे ना तो इन बच्चों की इतनी अच्छी केयर होती है. नॉट ओनली खाना खिलाना, बच्चा सिर्फ खाने से नहीं बढ़ता है, बच्चा बढ़ता है प्यार से. उसको अच्छे तरीके से पेरेंटिंग हो, उसका प्ले थेरेपी हो, एज अप्रोप्रिएट. इनफैक्ट हमारी सरकार ने एक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड MCP कार्ड बनाया है, एक नया है ना, वो इतना सुंदर डॉक्यूमेंट है, वो इतनी बढ़िया चीज है. एज ए पीडियाट्रिशियन मैं चाहूंगी कि जो भी माएं हैं जो मुझे सुन रही हैं और मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी माओं से बात करने के लिए, वो MCP कार्ड ना आप पूरा पढ़िए. हिंदी में इतना बढ़िया दिया हुआ है ना, कौन सा बच्चा किस उम्र पे क्या करना चाहिए और अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकते हैं उस बच्चे के लिए. तो एक तो वो जो रिहैबिलिटेशन है वो कंप्लीट होती है, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड फीडिंग ऑल्सो. जो RUTF की जो हम बात कर रहे हैं ना, इट्स जस्ट अ न्यूट्रिशनली डेंस, मतलब जिसमें बहुत सारी एनर्जी है. मुझे याद है कि जब हम इंटर्नशिप करते थे, मैं एम्स से पढ़ी हूँ नई दिल्ली से, हम बल्लभगढ़ में अपनी इंटर्नशिप करने जाते थे तो वहां पे एक बल्लभगढ़ मिक्स करके हम इन बच्चों को बांटते थे पीडियाट्रिक OPD के बाहर जो छतरी के नीचे लगता था. तो वो क्या होता था, वो बेसन, मूंगफली, सूजी और बहुत सारा उसमें घी होता था और थोड़े से फ्रूट्स होते थे और उसका ना हलवा टाइप का बना के हम बांटते थे. तो RUTF भी वैसे गाढ़ा खाना है जो रेडी टू यूज है. रेडी टू यूज का मतलब है कि वो आप खरीदिए और खिला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि RUTF दे के काम आपका खत्म हो गया. RUTF एक सप्लीमेंट है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरी डाइट को. आपको रोटी, सब्जी, दाल, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा, मांस, मच्छी अगर आप खाते हैं और आपके परिवार में बनता है, आपको वो पूरी डाइवर्सिटी से खाना खिलाना है. और RUTF बहुत गाढ़ा होता है तो आपको ना उसके साथ बच्चे को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको पानी अच्छे से मिले और बच्चे का वजन एक डॉक्टर या आंगनवाड़ी वर्कर या जहां

0: भी पीडियाट्रिक ओपीडी होती है, पीएचसी के मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनके मॉनिटरिंग में होना चाहिए. जो भी जैसे पोषण ऐप मैम ने बोला कि रियल टाइम हम वेट करते हैं, तो वो संतुलित आहार का पार्ट हम बना सकते हैं आरयूटीएफ का. बट अगर आरयूटीएफ नहीं हम ला पा रहे या महंगा पड़ रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये जो अच्छी चीजें जो हमारे हिंदुस्तानी डाइट में जैसे पिन्नी है, पंजीरी है, जैसे मैंने बल्लभगढ़ मिक्स बताया, तो अलग अलग पीएचसी अपना खुद का भी इस तरीके का खाना बना के बच्चों में, ये कुपोषित बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं. क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि आप जैसे साउथ में चावल की ज्यादा चीजें बनती हैं, नॉर्थ में वीट की ज्यादा चीजें बनती हैं, सेंट्रल इंडिया में हम मिलेट्स विलेट्स ज्यादा खाते हैं. तो जो भी आपके एरिया का ग्रेन है उसी से आप इनोवेशंस करिए, हलवा बनाइए, लड्डू बनाइए, खीर बनाइए, जो भी है आपको बैलेंस करके खिलाना है. और चीनी या नमक का अमाउंट थोड़ा सा बच्चों में ध्यान रखना चाहिए. बाकी तो आरयूटीएफ इट्स एन ऑप्शन, बट इट इज नॉट द ओनली ऑप्शन. सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आरयूटीएफ ही करना है, लेकिन आरयूटीएफ है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं हो पाएगा, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि वो रिच होता है थोड़ा, तो पानी ठीक से देना है, न्यूट्रिशनली बैलेंस मील करके देना है उस तरीके से.
1: जी बिल्कुल. पहले पोषण माह से लेकर अब तक 60 करोड़ से अधिक पोषण गतिविधियों का आयोजन किया जा चुका है. डॉक्टर भाटिया, एक एकेडमिक और पोषण विशेषज्ञ के रूप में आप इस जन आंदोलन को लोगों की आदतों में स्थायी व्यवहार परिवर्तन में बदलने के लिए क्या ठोस रणनीतियां देखती हैं? क्योंकि जब तक हम किसी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं देखेंगे, तब तक ऐसा लगता है कि कोई भी आंदोलन पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है.
2: जी, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को हाईलाइट किया है. जन आंदोलन पोषण अभियान की एक मेन स्ट्रेटजी में से है जो कि 2018 में लॉन्च हुआ. और जैसा आपने कहा कि अब हम नौवां पोषण माह आज से शुरू हुआ है और हम इसको मना रहे हैं. इसका रोल पोषण माह और पोषण पखवाड़ा जो हम मनाते हैं हर वर्ष, और इतनी 60 करोड़ एक्टिविटीज करी गई है इसके तहत, तो ये एक न्यूट्रिशन के बारे में जागरूकता और सभी की इन्वॉल्वमेंट का काम करता है. पर स्थायी रूप से डाइट और फूड हैबिट्स को चेंज करने के लिए जैसे हमें वन ऑन वन या काउंसलिंग की जरूरत है, या एक जो हमें चेंज लाना है उसमें सभी डॉक्टर, आंगनवाड़ी वर्कर, टीचर सभी की रोल है. और जैसा अभी अनु मैम भी बता रही थी कि एनआरसी में अगर बच्चे हैं तो वहां पे मदर की काउंसलिंग की जाती है, उनको सिखाया जाता है बच्चे को कैसे खिलाना है. और अभी जो हमारे ये होम बेस्ड केयर के प्रोग्राम्स हैं यंग चिल्ड्रन के लिए, उनमें भी होम विजिट्स करती हैं आशा और आंगनवाड़ी वर्कर जो हर महीने VHSND डेज मनाए जाते हैं. तो इनके थ्रू हमें बहुत ज्यादा जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, जिसमें हम जो एक गर्भवती महिला है, जो एक स्तनपान कराने वाली महिला है, और खासकर बच्चे, और जो एक पहले 1000 दिन की जब बात होती है तो उसमें पहले 2 साल के बच्चे इंक्लूडेड है प्रेगनेंसी के बाद. तो हमें एक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की हमने ऑलरेडी मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बात की है, और उसके बाद जो हमें ऊपरी आहार 6 महीने से बच्चे में शुरू करना है और धीरे धीरे उस 1.25 साल तक एक नॉर्मल डाइट पे लाना है, और पहले 2 साल का पोषण है उसमें ये इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि हम काउंसलिंग पे, नर्स थ्योरी पे और लोकल जो भी फेस्टिवल्स हैं उनसे इनको जोड़कर लोगों को उस भाषा में और उस तरह से समझाएं, उनके वहां के रीजनल फूड्स को और लोकल फूड्स को इंक्लूड करके. जैसे अभी मैम भी बता रही थी कि उसको एक ही फूड देने की आवश्यकता नहीं है, हमें आहार में विविधता लाने के लिए लोकल फूड और लोकल ट्रेडिशंस को जोड़कर, और जो ये हमारे ग्रास रूट वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनके थ्रू लगातार हर महीने और हर होम विजिट पर जब हम इस बदलाव की बात करेंगे और माँ को ठीक मात्रा में कितना पूरक आहार देना है, क्या खाने को देना है, ऐसे ही प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा भी नहीं देना है मगर पोषण युक्त आहार देना है, प्रोटीन युक्त आहार देना है जिसमें कि मोटा अनाज शामिल किया जा सकता है, लोकल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शामिल किए जा सकते हैं, तो उसके साथ जब हम कंबाइन करके ये जन आंदोलन को और पोषण माह को देखेंगे तो ये एक सटीक स्ट्रेटजी हो सकती है बिहेवियर चेंज लाने के लिए.
1: जी बिल्कुल. बच्चों में जिंक, विटामिन ए और आयरन की कमी से उनके इम्यून सिस्टम और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है. डॉक्टर अनु, एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में आप बार बार होने वाले संक्रमणों जैसे निमोनिया, डायरिया और पोषण की कमी के बीच के दुष्चक्र को कैसे देखती हैं?
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आनंद जी. एक्चुअली ये सवाल ना मेरे दिल के बहुत करीब भी है. क्योंकि मैं बाल रोग विशेष

0: यज्ञ तो है, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी. तो हम बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं जिनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इनको बार बार इन्फेक्शन होते हैं. वो बच्चे दूसरे होते हैं जिनको प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज होती है. लेकिन ये वाले जो बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुपोषण होने के कारण एंड इनकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, एस्पेशली जिंक. आपको याद होगा कि 20 साल पहले हम लोग जिंक नहीं देते थे डायरिया के साथ, है ना. जब मैं एमडी कर रही थी तभी इसकी गाइडलाइन आई थी, मुझे याद है, कि जिंक देना है हमें डायरिया के साथ. जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो इम्यूनिटी के बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है, और विटामिन ए भी जो है वो भी एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में. और जो हमारे गट है, जो गट की लाइनिंग है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग है ना, जो फर्स्ट डिफेंस है इन्फेक्शन के लिए. तो अगर हम विटामिन ए और जिंक की कमी हो जाएगी तो इन्फेक्शन तो होंगे. एंड जब बच्चे को इन्फेक्शन होंगे तो बच्चा पनप नहीं पाएगा. एंड अगर बच्चा पनपेगा नहीं तो बच्चा खेलेगा नहीं, इंटरैक्ट नहीं करेगा, स्कूल मिस करेगा. तो बार बार इन्फेक्शन होने से फिजियोलॉजिकली तो प्रॉब्लम है ही कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बच्चे का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी तो नहीं होता है. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन हो गया, जो कि हम अब आजकल एचबी भी चेक करते हैं, इंडियन पीडियाट्रिक्स ने अपनी कुछ गाइडलाइन दी है कि बच्चे जब कुछ कुछ एज पे आए तो हमें उनका हीमोग्लोबिन चेक करना है, उनको आयरन सप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें करनी है. तो ये बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि ये सेंट्रल रोल प्ले करते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए. तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगर कोई बच्चा इसमें फंस रहा है, और ये बच्चे जनरली सैम और मैम वाले, जैसे मैडम बता रहे थे, ये सैम और मैम वाले बच्चे हैं, ये फंस जाते हैं, एक विशेष सर्कल हो जाता है. बीमार बच्चा मैल न्यूरिश्ड हुआ, बिकॉज मैल न्यूरिश्ड हुआ उसको फिर इन्फेक्शन हुआ, फिर वो इन्फेक्शन की वजह से और मैल न्यूरिश्ड हुआ. ये वर्लपूल में बच्चा जो फंस जाता है ना, उससे बच्चों को निकालना बहुत ही दिक्कत होती है. एंड इससे बेटर ये है कि हम पहले ही माँ को हेल्दी रखें, गर्भावस्था में ध्यान रखें, पहले 6 महीने में बच्चे को दूध पिलाएं माँ का, उसके बाद ठीक से खाना शुरू करें. अगर हम इन 3-4 चीजों के स्टेप्स पे ही अगर हम फोकस करें तो हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं बिना बहुत ज्यादा खर्चा करे हुए, या बहुत फैंसी इंटरवेंशन नहीं चाहिए हमें. बेसिक चीजें करने से बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं. तो बेसिकली इन्फेक्शन प्रिवेंट करना बहुत ही जरूरी है. लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी आपके बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो प्लीज एक एमडी डॉक्टर को, एमडी पीडियाट्रिशियन को जरूर जाके दिखाइए कि कहीं आपके बच्चे को कोई इम्यूनिटी की दिक्कत तो नहीं है.
1: जी डॉक्टर भाटिया, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण एक बड़ा कदम रहा है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि इसके सुरक्षित उपयोग और आम जनता के बीच जो इसको लेकर मिसकंसेप्शन है, भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं. विश्वविद्यालय स्तर और शोध संस्थानों को किस तरीके से आगे आने की जरूरत है, कितना काम किया जा चुका है और आगे की क्या कार्य योजना चल रही है इस पर
2: मैं ये बताना चाहूंगी कि जो फोर्टिफाइड राइस है, इसको लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं लोगों में, और उसको कुकिंग कैसे ठीक से करनी है, पानी को नहीं फेंकना है जिसमें हम चावल को कुक कर रहे हैं, जो मांड अलग कर देते हैं चावल पकाते समय, उस तरह की जानकारी नहीं है. और कई बार उन लोगों को ये भी लगता है कि ये प्लास्टिक का चावल है, ये एक मिलावट है, ये क्यों दी जा रही है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. तो इन सब चीजों को लेकर कई विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च हुआ और जाना गया कि सिर्फ 20-30% महिलाओं और लाभार्थियों को ही इसके बारे में पता भी है, और इसको कैसे ठीक से इस्तेमाल करना है वो नंबर तो और भी कम है, हार्डली 5-10% के बीच में है. तो इसके ऊपर एक काम करने की, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करने की और इसकी भ्रांतियों को दूर करने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके. और उसके अलावा जब जिन लाभार्थियों को मिले, जरूरी है कि वो इसको ठीक से पकाकर ठीक से इसका सेवन कर सके, ना कि उसको निकाल दें जो चावल को चुनते समय या पानी को फेंक दें, जिससे कि जो उसमें आयरन है उसका अवशोषण ठीक से नहीं होगा. पूरा पर्पस फोर्टिफिकेशन का डिफीट हो जाएगा अगर हम आयरन को कुकिंग में लूज करेंगे. इसके ऊपर विश्वविद्यालय काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका कर सकते हैं, इसके बारे में डेमोस और भ्रांतियों को दूर करने के लिए जनता में जानकारी देने के थ्रू.
1: जितने भी माताएं आपको इस समय सुन रही हैं या जो परिवार इस कार्यक्रम के जरिए आपकी बातों को समझ रहा है, क्या संदेश देंगी?

0: पोषण माह को लेकर, बच्चों के विकास को लेकर और माताएं खुद अपना ध्यान कैसे रखें, बहुत संक्षेप में?
1: पहली बात तो ये, जैसे मैडम ने बोला, भ्रांतियों को दूर करना बहुत जरूरी है और जो भी आपके मन में शंका होती है आप डॉक्टर के पास जाइए, पढ़िए। किताब पढ़ने से ना बहुत नॉलेज आता है। मुझे लगता है कि हमारी जो माएं हैं, जो यंग मदर्स हैं, वो ना कई बार बोल नहीं पाती हैं परिवार में। मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम अपनी लड़कियों को, जो हमारी डॉटर्स हैं, जो यंग मदर्स हैं, उनको आवाज दें। एंड उनकी जो आवाज है वो परिवार तक पहुंचे, वो बहुत जरूरी है। कई बार माओ को लगता है कि हाँ उनको पता है ये उनको करना है, लेकिन वो डर जाते हैं बिकॉज इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उनको बोलने में भी लगता है कि अगर हमने बोल दिया तो हमारी सास क्या सोचेगी, या हमारी मम्मी क्या सोचेगी, हमारे पापा क्या सोचेंगे। तो पहले तो हम, ये जो यंग मदर्स है, मैं कहना चाहूंगी आप प्लीज किताब पढ़िए कि जो आपको भाषा समझ में आती है, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, व्हाटएवर, वो जरूर पढ़िए। न्यूट्रिशन पे पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़िए। अगर आपको जरूरत है तो मदद लीजिए। आजकल तो यूट्यूब पे इतने सोर्सेस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ICMR की गाइडलाइंस है कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे हमारा थाली बननी चाहिए, आधा फल सब्जियां होना चाहिए, दाल कितनी होनी चाहिए। पढ़ के एक तो एजुकेट करना ये यंग लड़कियों को बहुत जरूरी है। अगर हम उनको एम्पावर करेंगे ना आनंद जी, उसके बाद तो सब कुछ पजल की तरह फिट हो जाए।
0: आज की चर्चा हमें यही याद दिलाती है कि एक पौष्टिक निवाला सिर्फ भूख नहीं मिटाता, वो किसी बच्चे को ताकत देता है, किसी माँ का भरोसा बनता है और किसी परिवार के बेहतर भविष्य की नींव रखता है। इसलिए पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, सिर्फ एक विभाग की नहीं, ये जिम्मेदारी हम सब की है। क्योंकि एक पोषित बच्चा एक मजबूत पीढ़ी है, एक स्वस्थ परिवार एक सशक्त समाज है और एक पोषित भारत एक समृद्ध भारत है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपने विचार आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू आनंद जी,
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे संपूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाटिया कौल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़ भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासुरिया से भी मुलाकात कर विकास सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर

विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। दिल्ली नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान व निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आज चलाए गए अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन में 34 जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 17 प्रॉपर्टीज को सील किया गया, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। राजधानी में पीजी इमारतों के एक बड़े सर्वे के तहत लगभग 1,243 ऐसी इमारतों की पहचान की गई है जहां पीजी की सुविधाएं चल रही हैं और जिनमें लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। यह सर्वे पूरी दिल्ली में जारी है, इसे कल तक पूरा करने के निर्देश हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन है। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला आधारित योजना पद्धति के माध्यम से मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि कौशल विकास पहल स्थानीय जरूरतों से प्रेरित हो और उद्योग, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।